तत्सव ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग अर्जुन उवाच